0: People Powered Radio 2XX FM 98.3, a volunteer, not-for-profit community station accessible to all. If independence and diversity are important to you, become part of the 2XX FM community by subscribing, donating, sponsoring or volunteering. Go to 2XXFM.org.au.
1: आप जयंती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत जेंडर इक्विटी मैटर्स सुन रहे थे पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर शाम के 7 बज रहे हैं। रेडियो हार्मनी पर मैं आपका प्रस्तुत करता हूं अरविंद गुप्ता।
2: दिस इज हार्मनी।

0: You are tuned to the voices of the subcontinent.
1: रेडियो हार्मनी के श्रोताओं को अरविंद गुप्ता का प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। रेडियो हार्मनी हर बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर रेडियो 2XX FM 98.3 पर आपके लिए आता है। रेडियो हार्मनी आपको समसामयिक मुद्दों, महत्वपूर्ण घटनाओं, समाचारों, विचारों और समुदाय से जुड़े मुद्दों की कवरेज लाता है। जानकारी और मनोरंजन से भरपूर एक घंटे के लिए हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, नवरात्रे 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। आज हम अपना कार्यक्रम देवी माँ के आह्वान से शुरू करते हैं।
2: शंभु की प्यारी, गिरिराज की दुलारी, गिरिजा कबक कबक कबक करुण गौरवाली।

भवानी। ये सुंदर भजन गाया था कैलाश खेर ने। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इस तरह से हैं। 10 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है, 11 को नवरात्रि शुरू होते हैं, 16 को स्कंद षष्ठी, 17 की सरस्वती पूजा, 19 को दुर्गा अष्टमी, महानवमी और सरस्वती विसर्जन, 20 को विजयदशमी, दशहरा, बंगाल में महानवमी और दक्षिण में सरस्वती पूजा, बुद्ध जयंती, ये सभी 20 अक्टूबर को हैं, 25 की शरद पूर्णिमा, 26 को वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी 26 की है, 29 को करवा चौथ। इंटरनेशनल डेज में इस प्रकार हैं, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे है, 7 को वर्ल्ड कॉटन डे, 9 को वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, 11 का इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, 13 को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल विमेन, 16 का वर्ल्ड फूड डे, 17 को इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड सो ऑन। 11 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हो रहे हैं दोस्तों, शरद नवरात्रि 2026 रविवार 11 अक्टूबर 2026 को घट स्थापना के साथ शुरू होगी और मंगलवार 20 अक्टूबर 2026 को विजयादशमी यानी दशहरा के साथ खत्म होगी। शरद नवरात्रि की खास तारीखें शुरू होने की तारीख है रविवार 11 अक्टूबर, दुर्गा अष्टमी 18 या 19 अक्टूबर को है, 9 दिन के शेड्यूल के हिसाब से अंदाजा लगा रहे हैं, खत्म होगी विजयदशमी के साथ मंगलवार को 20 अक्टूबर को। द डेली सीक्वेंस फॉर शरद नवरात्रि लिंक्स ईच डेज डेट टू ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द नव दुर्गा एंड इट्स एसोसिएटेड सेलिब्रेटरी कलर। प्रतिपदा द फर्स्ट नवरात्रि 11 अक्टूबर को, यह है मां शैलपुत्री की और इसका रंग है ऑरेंज। इट रिप्रेजेंट्स वार्मथ, एनर्जी एंड वाइब्रेंस। 12 अक्टूबर को है मां ब्रह्मचारिणी, कलर इज व्हाइट एंड सिंबलाइजेस प्योरिटी, पीस एंड मेडिटेशन। 13 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा, कलर इज रेड एंड इट डिनोट्स ब्यूटी, पावर एंड फियरलेसनेस। 14 को मां कुष्मांडा, कलर इज रॉयल ब्लू एंड इट स्टैंड्स फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड स्ट्रेंथ। 15 को मां स्कंद माता, कलर इज येलो, रिप्रेजेंटिंग हैप्पीनेस, वार्मथ एंड ऑप्टिमिज्म। 16 को मां कात्यायनी, कलर इज ग्रीन, सिग्निफाइंग न्यू बिगिनिंग्स, ग्रोथ एंड फर्टिलिटी। 17 को मां काला रात्रि, कलर इज ग्रे एंड इट रिप्रेजेंट्स द इमेंस स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 18 को मां महागौरी, कलर बीन पर्पल, डिनोटिंग पीस, इंटेलेक्ट एंड ग्रेस। एंड द लास्ट वन ऑन 19 अक्टूबर, मां सिद्धिदात्री, कलर इज पीकॉक ग्रीन एंड इट रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट एंड डिवाइन ग्रेस। यहां नव दुर्गा के हर रूप के लिए मुख्य ध्यान मंत्र और बीज मंत्र भी हम जान लेते हैं, जिन्हें आप अपनी रोजाना नवरात्रि पूजा के दौरान जप सकते हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री का मंत्र, ओम देवी शैलपुत्रे नमः।

ये था शैल पुत्री माँ का एक भजन जिसे गाया था लोकेश गर्ग ने और इसका संगीत दिया था लोकेश गर्ग ने ही, बोल लिखे थे संदीप कपूर ने। दूसरे दिन की जो देवी वर्शिप है वो है माँ ब्रह्मचारिणी। उनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः।

प्रसीदतुमयि ब्रह्मचारिण्युत्तमम्। नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाली देवी। महापुराण की कथा अनुसार माँ ने अपना ये रूप अपने मन वांछित वर को पाने के लिए धारण किया था। राजा हिमवान के घर में जन्म लेकर पार्वती जी जब विवाह के योग्य हुए तो उन्होंने ये व्रत ठाना कि आदि देव शिव को ही अपने पति स्वरूप स्वीकारेंगी। नारद मुनि एवं अन्य देवी देवताओं के तमाम यत्न करने के बावजूद देवी ने योगी राज विष्णु के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे वन जाकर कठिन तप में लीन हो गई। वन में रहते हुए उन्होंने घनघोर तपस्या की। इसी कारण पार्वती जी को प्रकृति का सहचरी भी कहा जाता है। देवी प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति स्वरूपा हैं, प्रकृति उनमें वास करते हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है, दूसरे में माला सुशोभित रहती है। कमंडल उनके याचक भाव को दिखाता और जप माला तप भाव को। नव दुर्गा का ये तपस्विनी वेश जप तप वैराग्य संयम और सदाचार का प्रतीक है। ये रूप नारी स्वतंत्रता, उसका उन्मुक्त निर्णय, अस्मिता और प्रबल इच्छा शक्ति को भी दिखाता है। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है और कठिन से कठिन झंझावातों को सहजता से सहन कर पाती है। माँ का ये स्वरूप हमें ये भी याद दिलाता है कि नारी जाति को हे मानना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से एक भयंकर भूल होती है। नारी में तप का ओज है, संयम का तेज है और एक व्रती होने की शक्ति है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हुए आइए हमारे जीवन में भी सदाचार आए और संयम आए, शक्ति।

जय माँ शक्ति, ये कहानी सहित भजन माँ ब्रह्मचारिणी के लिए गाया गया था और इसे गाया था मालिनी अवस्थी ने। तीसरे दिन पूजा होती है माँ चंद्रघंटा की और उनका मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाए नमः।

ये भजन माँ चंद्रघंटा के लिए गाया गया और इसे गाने वाले थे रतन मोहन शर्मा। संस्कृत में भजन था, इसको कंपोज किया था रतन मोहन शर्मा ने ही। दोस्तों, चौथे दिन हम पूजा करते हैं माँ कूष्मांडा की और उनका मंत्र है ओम देवी कूष्मांडाए नमः।

माँ कुशमंडा, ये गाने वाले थे कुमार विशु, बोल लिखे थे जितेंद्र रघुवंशी ने, संगीत दिया था पीयूष चौधरी ने। आइए अब देखते हैं पांचवें दिन को। हम भक्ति करते हैं माँ स्कंद माता की, और इनका मंत्र तो वैसे ही जिस तरह से और देवियों का है, ओम देवी स्कंद माताए नमः।

ये था माँ स्कंद माता का एक भजन। गाने वाले थे टी एस रंगनाथन और इसे संस्कृत भाषा में गाया गया और रिलीज किया था गीता कैसेट्स ने। छठे दिन माँ कात्यायनी का मंत्र जाप होता है, ओम देवी कात्यायने नमः।

माँ कात्यायनी का ये भजन गाया था डॉक्टर सुभद्रा देसाई ने और ये पेशकश थी दूरदर्शन नेशनल की। सातवें दिन माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम देवी काल रात्राय नमः।

देवी काल रात्रि का ये मन ये भजन गाया था चेतना शुक्ला ने और इसके संगीतकार थे अरुण मिश्रा, बोल लिखे थे राज अनारी ने। आठवें दिन हम मंत्र जाप करते हैं महागौरी का, ओम देवी महागौराय नमः।

माँ महागौरी, ये भजन था डॉक्टर सुभद्रा देसाई का गाया हुआ और ये भी दूरदर्शन नेशनल की पेशकश थी। आखिरी दिन, नौवां दिन माँ सिद्धिदात्री का है और उनका मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्राय

शास्त्रों और पुराणों ने माँ सिद्धिदात्री को दुर्गा माँ का नौवा और अंतिम स्वरूप माना है। इसी कारण उनको अंतिमा नाम से भी पुकारा जाता है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि नवदुर्गा के सभी रूप किसी न किसी तरह माता पार्वती जी के ही अवतार हैं, उन्हीं के प्रतिरूप हैं और सभी कथा कहानियां शिव पार्वती के जीवन से ही संबंधित हैं। माता सिद्धिदात्री भी पार्वती का पूर्ण और सर्वगुण संपूर्ण रूप है। मार्कंडे पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखी एक कथा मिलती है कि जब नवदुर्गा के चतुर्थ रूप यानी कुष्मांडा ने सूर्य के साथ त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश की रचना की, तब ये तीनों देव सिद्धिविहीन थे। तब देवी की प्रेरणा से ही तीनों ने उनकी अघोर आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें अष्ट सिद्धियां प्राप्त हुई। इन सिद्धियों के मिलने के बाद ही ये तीनों अपनी अपनी क्षमता में पूर्ण हुए, परिपक्व हुए। पौराणिक कथा ये भी कहती है कि सिद्धिदात्री की शक्ति का एक अंश शिव के आधे अंग से जुड़ गया। इसी अक्षय और महासंयोग को हम अर्धनारीश्वर के नाम से भी जानते हैं। सिद्धिदात्री माता अणिमा लघिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व नामक सिद्धियों को देने वाली है। अपनी अनोखी छवि में वो पूरे खिले हुए कमलासन पर विराजती हैं। उनके चार हाथ हैं जिनमें चक्र शंख गदा और कमल सजे हुए हैं। आइए माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करते हैं, देवी का सुमिरन करते हैं और माँ के संपूर्ण रूप को मगन होकर विचारते हैं

0: आशा है आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमने नवरात्रि को कवर किया और सारी नौ देवियों के बारे में बात की और भजन उनके सुनाए। अगले बुधवार शाम 7 से 8 बजे तक पीपल पावर्ड रेडियो 2XX FM 98.3 पर रेडियो हारमोनी फिर प्रस्तुत होगा।
1: Have you thought about subscribing to 2XX? Subscribing is a really easy way to show your support for the station. With your help, we can continue to bring you over 100 hours of quality content every week. Your contribution will make a real difference. Subscribe or donate by visiting our website at 2xxfm.org.au. Thank you.